0: आवाज दी खूबसूरत प्रवास हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया ते आप सब दा स्वागत है। रेडियो ते अपने गीतां दी फरमाइश ले तुसी साडे नाल ईमेल अते टेलीग्राम राही जुड़ सकदे हो। टेलीग्राम मैसेज करो इस नंबर ते 9197080149। तुसी सानू ईमेल भी कर सकते हो request@harmanradio.com।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी।

0: हम आशिक हैं, है हमारा क्या, है हमारा क्या, हम आशिक हैं। और आशिक भी ऐसा आशिक होगा ना तुम्हारा। ओ
1: विचार चाचा, जिथे सच दे सार बारे विचार चाचा ना होवे, उस स्थान नूं अंधकार ही समझना चाहिदा है। सुने विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

नमस्कार, सत श्री अकाल। हरमन रेडियो सुनने वाले तमाम श्रोताओं को मैं उदित नारायण की तरफ से मेरा प्यार भरा नमस्कार।

0: अपने बिजनेस की तरक्की लिए तुसे भी हरमन रेडियो दियां सेवावां हासिल कर सकते हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस की एड देने लिए जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करन लिए संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन विजिट करो।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी

0: के रूप में हसो।
1: जट्टा के मुंडे साढ़े नाल है जो चंडा गाड़ के बदमाशी करना है।
0: थोड़ा थोड़ा हंसना जरूर चाहिए।
2: आज ठंडिया ते सर्द हजाम था, बिल्कुल ही ठंडिया। मैं कहना
3: वे पोस्तिया वे मैनू पता लगा तू हजाम था करन लग।
2: मैं कहना माई मोनो आजकल हजाम था करी दिया। काम कोई भी माड़ा नहीं हुंदा, बंदा ही माड़ा हुंदा।
3: चला तो बड़ी सोहनी गल की थी। अपना हरी कृष्ण का मुंडा लेके आई है मैं, एदी हजामत कर दे जरा।
2: हरी कृष्ण दे अपने ओ पंडता दा मुंडा
3: आहो
2: लिया बिठा इनू इथे। आ जा पुत,
3: आ बैठ भाई,
2: आ ले फड़ाई जरा बुरश मेरा।
3: आ ले फड़ बुरश, होर की चाहिदा। दे मर जाने थुकी जाना साबण दे।
2: मैं कहना माई मुण बेच ना बोल, अजकल पानी की किल्लत थुक थुक झग बनाई।
3: तेरा बेड़ा तर्ज वे चल वे मुंडिया उठा, अपने को हजामत करानी।
2: गल सुन ला माई मुण, सवेरे सवेरे बोनी दा बेड़ा एवी ना चढ़ी जा। ए तो अपने पिंड दा मुंडा ना।
3: आहो
2: मैं कहना मैं साबण ते थुकदा, जे कोई बाहरों आउंदा ओहदे मुंह ते थुक के फेर बुरश मारदा।
3: इतना गंदा भी है, माड़ा भी है, कोई तेरे सिफत में नजर नहीं आई।
4: आर्मन रेडियो
5: 24/7। सत श्री अकाल जी, मैं हूं सुरमीत मावी। तुम सुन रहे हो हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया। तुम सुन रहे हो हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया।
4: ਕੁੰਦਰੀ ਮਾਨਕ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ, ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ, ਸ਼ਿੰਦਾ, ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤ ਰੋਜ਼ ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਸਿਡਨੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ। ਅਗਲੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਚ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਸੀਂ।

इस घंटे विच तुसी सुन रहे हो एक पुराना अते एक नवा हिट गीत। केड़े केड़े देशां विच की वापर रहा है, हर देश विच हो रही भिन्न भिन्न गतिविधियां दी जानकारी मुहैया करवाएगा हरमन रेडियो। हरमन रेडियो, हरमन रेडियो विदेशी बसदे पंजाबियां दी रूह नूं पंजाब दी मिट्टी नाल जोड़न दा उपराला कर रहा है हरमन रेडियो। हरमन रेडियो।

0: रोटी हजम नहीं होंगी। वरतो गोल्डन ग्रेन फ्लोर मिल्स का गरेवाल चक्की आटा, ताजा घट कैमिकल की वरतों वाली कणक जेडी की सीधी खेतों चो मिल च लाई जाती। आस्ट्रेलिया का बनिया शुद्ध आटा, ताजा खाओ ते तंदुरुस्त रहो। आटे तो इलावा ताजा बेसन, लड्डू वाली स्पेशल बेसन, मल्टी ग्रेन आटा, काबली छोले, मसरां दी दाल, चना दाल, सोयाबीन ते बादाम भी साडे अपने प्रोडक्ट हैं। वधेरे जानकारी लई विजिट करो गरेवाल गोल्डन ग्रेन डॉट कॉम डॉट ए यू या फोन करो 0428895564।
1: आ गया तुहाडा ताया आस्ट्रेलिया दे ब्रिस्बेन चो। ओ आजो आजो ताया जी, वेलकम। ताया अज रात साडे कोल ही रहना पऊ थोनू। ओ मैं आ ता गया, मैं ता नींद इंडिया आले गद्दे ते आउंदी आ। इथों किथों मिलू इंडिया आले गद्दे? लो ताया आपा ले आउने इंडिया आले गद्दे पंजाबी फर्नीचर तो। पंजाबी फर्नीचर? जी हाँ, पंजाबी फर्नीचर इथों मिलदा। सारा इंडियन फर्नीचर जो भी तुहानू चाहिदा सब इथों मिलू। मंजे, धार्मिक फोटवां, चादरां, साइकिल, चूल्हे, दातियां, रंबे, कई सब कुछ इथों मिलू। ताया जी लाया था तू मेरी टेंशन दूर करती। नाले तेरी ताई कहिंदी सी भी पता करी इंडियन बॉक्स बेड दा, ओनू वाला फिकर लगा रहिंदा लीड़े लते सामने दा। लिया फिर पता लिखा फिर पंजाबी फर्नीचर दा। लिखो फिर 2A 130 किंगस्टन रोड अंडरवुड ब्रिस्बेन। आ कॉल कर लियो ताया जी 0404-000-536 ते। वेबसाइट है जी punjabifurniture.com.au। नवी अपडेशन दे लई फॉलो करो फेसबुक पेज नू @punjabifurniture।
2: मुआफी चाहुने हां कि अज असी इस घंटे दा खबरां दा बुलेटिन तकनीकी कारणा करके पेश नहीं कर सके।

0: तेरा
1: मेरे थे यौन नहीं बड़ी। लाइट बंद करो यार,
2: सो गए हो? चल मेरा पोटू तेरा माल।
3: रोजाना दोपहरे सिडनी समय 1 to 2 बजे तक असी सुनांगे खबरां, अज दा इतिहास, हासरस कमेडी अते टॉप गीत।

0: चट्टा के मुंडे साढ़े नाल है जो चंडा गाड़ के बदमाशी करना हैगा।
1: थोड़ा थोड़ा हसना जरूर चाहिए।
2: फट्टा ए भजनी है।

0: गया बेड़ा, हाय बह गया बेड़ा, मैं ता पाजू राहे।
1: ओ मुलाजमा, ओ मैं कसम जग्गे दी बीबी थापी चके इनू भजी आउंदी आ।
2: ओ तुसी साफ जी जाओ, मैं आपे वेख लैना जग्गे दी बीबी नू। ओ हां भी बीबी, कीदा बह गया बेड़ा?
0: मैं ता पाजू राहे, आज तेरी क्रिकेट टीम दा है।
2: लो बीबी गल सुन, तू क्रिकेट दी टीम नू इना माड़ा कही जानी है, तेरा जग्गा भी ते क्रिकेट दी टीम ची आ।
0: आओ हैगा
2: ना गल सुन बीबी, ओ बैटिंग करदा?
0: नहीं करदा।
2: फिर ओ बॉलिंग कराउंदा?
0: मैं कह नहीं कराउंदा।
2: ना होर की करदा?
0: अच्छा, जो मीह पै जांदा पिच ते तरपैल पान जांदा।
2: अच्छा, एदा मतलब के ए थापी लै के तू क्रिकेट वाले दी तरपैल धोण आई आ?
0: मैं ता पा दूं राहे, मैं तरपैल धोण नहीं आई आ, मैं इना दी जान नू रोण आई आ।
2: ना बीबी, हुण खिडारियां दी जान नू ना रो, ओ तैनू पता नहीं 19 सालां बाद इंडिया ने बाहरले मुल्कों सीरीज जीती आ। नाले गल सुन बीबी, ना तू कदे क्रिकेट दा मैच वेख्या?
0: मैं ता पाजू राहे, हले मैं कल ही मैच देखिया।
2: किथे?
0: रेडियो ते आउंदा पिया जी।
2: फिर तो तेनू ए भी पता होना कि अपना हरभजन सिंह जानी की भज्जी, ओ पूरियां 6 विकटां लै गया।
0: 6 विकटां लै गया? तू मैनू बेवकूफ समझदा है? मैं ता पाजू राहे, ओ विकटां ता हुंदियां सारियां, तेना ते हरभजन 6 किथों लै गया?
2: ओ बीबी, 3 इधरलियां लै गया ते 3 उधरलियां लै गया।
0: लै दस, 3 है दलियां लै गया, 3 उधरलियां लै गया है? ना जे हरभजन 6 विकटां लै गया ते जग्गा साडा इत्थां रख के खेलूगा?
2: ओ बीबी, ओ बीबी पूरी गल सुन ला, ओ क्रिकेट खिडारियां नू ऐदां ना कही जा, ओ तैनू पता नहीं अपनी टीम हुण बाहरले मुल्कां च वी खेडण जा रही है।
0: हां, बाहरले मुल्कां च खेडण जा रही आ। के आ कहिंदे जेड़ा इना दा चौधरी आ सारियां दा, खरे मौंगली टौंगली की नाम आ उहदा?
2: ओ बीबी, उहदा नाम है सौरव गांगुली, ओ साडी इंडिया टीम दा कप्तान आ।
0: अच्छा, उहदे करके हुंदा सारा नुकसान आ? मेरी गल सुन काका, इना दा बाहरले मुल्कां च खेडण जाना बड़ा रिस्की आ, ना हुण गांगुली को सेंचुरी बनदी आ ते ना ही बनदी 50 आ।
2: ओ मन्नियो, को 50 नहीं बनती पर कैचा ना बीबी वधिया फड़दे आ।
0: मैं ता पाजू राहे, है कैचा फड़दे आ? ओए कैचा फड़न दा इना दा बखरा ही अंदाज आ, ऐदा बुक कर लैंदे जिदा लेना हुंदा प्रसाद आ।
2: ओ बीबी, तू छड सौरव गांगुली नू, तू ए दस के इंडिया दे बोलदरा मारे तेरा की ख्याल है?
0: मैं ता पाजू राहे, की ख्याल आ, उना दा भी बुरा हाल आ। है बॉलर हुण कहिंदे आ थी ता पैसे ले खेडदे थी, हुण साडियां कोठियां पै गईयां, हुण सानू बैट किथे मिलदी आ? साडे पल्ले वाइट बॉलां ते 9 बॉलां रह गईयां। पिछे जे वर्ल्ड कप होया।
2: ओ बीबी, वर्ल्ड कप नी, वर्ल्ड कप हुंदा?
0: पता नहीं केड़ा कप हुंदा, साडे घरे दा चाह पीण नू भी कप है नी। पिछे जे जदों वर्ल्ड कप होया वी आस्ट्रेलिया वाले जित गया, सचिन ते सहवाग कहिंदे हुण साडे को चौके छिके नहीं बचदे, साडे चौके छिके मारन वाले बैट ही बिक गया। मैं ता पा दूं राहे।
2: ओ जग्गे दी बीबी गल सुन, ओ तू साडे खिडारियां नू कुछ ना कह, रब दा वास्ता तू आप ही राहे पै। आओ जी हवलदार साहब, ओ चलेगी जग्गे दी बीबी।
3: रेडियो दिल पंजाबी, जज्बा पंजाबी, पंजाबी, पंजाबी।

लोग अक्सर ही कह देंदे आ भी दुनिया च बहुत गंदगी है, हुण इत्थे जाणा मुश्किल होया पिया, पर एक बारी जाके कमल दे फुल नूं देख के आयो, सारियां गलत फहमियां दूर हो जाणगियां।

जी आयो प्रोग्राम अज दे दिन इतिहास विच अज असी गल बात करांगे 14 अक्टूबर दे दिन नाल संबंधित सिख इतिहास पंजाब दी तवारीख ते देश दुनिया दे नाल जुड़ियां कुछ अहम घटनावां दे बारे। उस तो पहला आप सारिया नूं सत श्री अकाल अदाब नमस्कार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला जिक्र है जी 14 अक्टूबर सन 1700 दा जदों दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी निर्मोहगढ़ तो बसाली गए। बसाली रोपड़ तो नूरपुर बेदी जांदी सड़क उत्ते निर्मोहगढ़ अते कीरतपुर साहब तो 13-14 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पिंड है। उदो एक निक्की जी रियासत सी। इधर राजा सलाही चंद, सलाही चंद की पत्नी राणी हीरा देवी बिलासपुर की राणी चंपा यानी अजमीर चंद की दादी की सकी भैन सी। राणी चंपा आखिरी साह तक गुरु घर की सेवादार रही। जदों हीरा देवी ते सलाही चंद नूं पता लगा कि अजमेर चंद ने दगा करके गुरु पातशाह ते हमला किया है ते निर्मोहगढ़ की घेराबंदी की है तो उन्होंने अपने वजीर गुरु जी वल भेजे ते उन्हां नूं निर्मोहगढ़ छड के बसाली आने वास्ते आख्या। बसाली रियासत सरसा नदी तों दूजे पार सी। गुरु पातशाह 14 अक्टूबर किते कुछ लेखकां ने 15 अक्टूबर भी लिखा है नूं तड़के सवेरे निर्मोहगढ़ तों सरसा नदी वल चल पे तां जो दरिया पार करके बसाली जा सकण। उधर जद अजमेर चंद नूं इहदे बारे पता लगा तां उहने गुरु पातशाह उत्ते हमला कीता। गुरु पातशाह ने सिख फौजां नूं दो हिस्सिआं विच वंडिआ ते आप दरिया पार कर गए। इधर भाई उदय सिंह की अगवाई विच सिंघां ने तीरां अते गोलियां दा ऐसा मींह वराया कि एक वार तां दुश्मन दी तौबा हो गई। जदों सारी फौज पार कर गई तां भाई उदय सिंह भी दरिया पार कर गए ते गुरु जी नूं जा मिले। इस लड़ाई विच भाई केसरा सिंह, भाई गोकल सिंह ते कुछ होर सिख शहीदियां पा गए। शाम वेले गुरु पातशाह बसाली पहुंच गए। बसाली दे लोकां ने गुरु पातशाह नूं बड़ी गर्मजोशी नाल जी आया आख्या। गुरु पातशाह राजा सलाही चंद दे महल विच रहे ते सिंघां वास्ते पहाड़ी दे हेठां तंबू ला दित्ते गए। जिक्र है सन 1745 दा जद सारी सिख फौज नूं 30 जथियां विच जथेबंद कीता गया सी। जकरिया खान दी मौत तों बाद 1745 तों मार्च 1746 दौरान लाहौर दी सूबेदारी बारे फैसला ना हो सकन करके सिखां नूं कुछ चिर वास्ते आराम दा साह आ गया। हुण सिखां ने फिर अमृतसर पहुंचना शुरू कीता। हुण पहलां वांग मुगल फौजां दे गश्ती टोले सिखां दी भाल विच आदम बो करदे नजर नहीं सी आउंदे। 14 अक्टूबर 1745 दे हिंदू दिवाली मना रहे सी। इहदे दिन सिखां ने भी सरबत खालसा इकट्ठ बुलाया। नवाब कपूर सिंह की अगवाई विच हजारां सिख गुरु का चक अमृतसर पहुंचे। इस मौके ते कौम दे मसलियां ते भरवी विचार हुए। टोले सिखां दी भाल विच आदम बो करदे नजर नहीं सी आउंदे। 14 अक्टूबर 1745 दे हिंदू दिवाली मना रहे सी। इहदे दिन सिखां ने भी सरबत खालसा इकट्ठ बुलाया। नवाब कपूर सिंह की अगवाई विच हजारां सिख गुरु का चक अमृतसर पहुंचे। इस मौके ते कौम दे मसलियां ते भरवी विचार हुए। कौम की आजादी की जद्दोजहद नूं सुचजे ढंग

0: हरमन रेडियो कमाल बा कमाल।
1: एक अफ्रीकी कहावत अनुसार जे थोड़ा दुश्मन खरगोश है ता पहला ए गल स्वीकार करो कि ओ नठदा तेज है। सोने विचारां ले जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

0: हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया
1: 24 घंटे सत्ते दे।
2: युद्ध बारे अफ्रीका दी कहावत है कि जदों अन्ना एक कहे कि ओ पत्थर सुट्टेगा ता समझ जाओ कि उस दे पैर हेठां पत्थर पिया है। सुने विचारा ले सुनते रहो।

गुरु की कृपा दे नाल हिरदे विच भावना बना के परमात्मा दे नाम नूं जपिया जावे फिर सहज छेती कर जाइए। दा अर्थ है कि मनुख अपनी पत सलामत रह के गुरु वाला बन के उहदे चरणां विच लीन हो जांदा है। महाराज जी ने विश्राम दे

गरीबी बारे जापान वाले कहंदे ने शराब पीण लगे अपने परिवार दी गरीबी जरूर याद कर लवो। अते फारसी दी कहावत है कि शेर दे हौसले नूं लूंबड़ी वाले डर दे विच बदल वाली चीज नूं गरीबी कहा जांदा है। किताब संसार प्रसिद्ध महावरे परमिंदर सोढ़ी सोहणे विचारां ले जुड़े रहो हरमन रेडियो नाल।

उमर बारे स्पेन दी कहावत है कि दंद झूठ बोल सकदे हन, वाल धोखा दे सकदे हन, पर छुरड़ियां असल उमर दस दिंदियां हन। चंगे विचार विचारो अते जिंदगी विच लागू करो। हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया।

खूबसूरत आवाज दा सफर हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया मुड़ हाजिर होने एक छोटे जे वक्फे तो बाद सुनते रहो आवाज दी खूबसूरत परवाज हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सेंड अस मैसेज ऑन info@harmanradio.com

0: हंसते रहो बसते रहो हरमन रेडियो
1: रेडियो ताई कुछ देखा
2: ना
1: ले ओ मदन पानी है ना कछ च बही दिती हुई ते चाची अतर ओदे आके अंदर वड़ गया अंदर ओदे बाहर डालिया को
2: ते फिर की हो गया सौ लेना देना हुआ अगले दा हिसाब किताब करना आया होगा
1: अच्छा
2: चल आप चल के देख लेनी है
1: चल फिर।

मेरे प्यारे ईमानदारों, रिश्वत खोरो, वैष्णो ते शराबियो, देशा विदेशा च बसदे सारे पंजाबियो, मेरे वीरो, भैनो, बच्चियो, बुजुर्गो ते भाबियो, डरैवरो, कंडक्टरो, अद्धी ते पूरी सवारियो, वख वख महकमयां दे मुलाजमो, प्राइवेट जां सरकारियो, होमगार्ड, सीआरपी ते होर पुलिस दे कर्मचारियो, बिजली, फूड सप्लाई, कानूंगो ते पटवारियो, पूरे पंजाब दियो नूहो ते सस्सो, झगड़े छड्ड के दो मिंट हसो, प्यारे पेंडू शहरी शादीशुदा छड़े ते कुआरियो, छोटे वड्डे दुकानदारों ते कलाकारों सारियो, जनता दी कचहरी च इक वार फिर हाजिर है तुहाडा गुनाहगार भगवंत मान।

0: जोर लगा के
1: हईशा,
0: मूड बना के
1: हईशा,
0: खिच जवाना
1: हईशा।
2: एक मिनट जुगनू जी, आ 20-25 आदमी नाल लेके तुसी की रौला पाई जा रहे हो?
0: असी अपने मुल्क नू धक्का ला रहे हैं।
2: क्यों, की गल?
0: क्योंकि रिश्वत खोरी ने पूरी दुनिया च मुल्क नू बदनाम करता, मतलबी लीडर ने मुल्क दा इंजन जाम करता, बैटरी चोरी होगी, तेल वाली टैंकी च मोरी होगी, मोबाइल की घाट है, इसे करके हिंदुस्तान अजकल धक्का स्टार्ट है।
2: थोड़ा चेर पहला था अपने मुल्क दा इंजन ठीक थी,
0: हाँ
2: हुण की हो गया?
0: ओ इंजन भी की करे, टायर कसे पए ने, सड़कां माड़ियां ने, अजकल इस गड्डी च 90 करोड़ सवारियां ने, सवारियां सीटां पिछे लड़दियां ने, 2 उतरदियां ने, 20 चढ़दियां ने, बहुत लम्मी वाट है, इसे करके अपना मुल्क आट है।
1: खिच जवाना
0: हईशा।
2: कमाल है यार, बाहरले मुल्क इन्ने पुराने मॉडल है,
0: हाँ
2: फिर भी अजे तक इन्ने वधिया चलदे आ।
0: हाँ हाँ।
2: अपना मुल्क तो अजे 47 मॉडल ही है, फिर इन्नी जल्दी एदा इंजन खराब किवें हो गया?
0: ओ बस, गरीबी दे वैरिंग ने अनपढ़ता दी ग्रीस है, बेईमानी दे हंप ने करदा अमरीका दी रीस है, तरक्की आला गेर फसया पिया ताही दल दल च धसया पिया, उत्तों फोकी ठाट है, इसे करके अजकल अपना इंडिया धक्का स्टार्ट है। जोर लगा के
1: हईशा,
0: मूड बना के
1: हईशा,
0: खिच जवाना
1: हईशा।
2: अच्छा गल सुन
0: यार, धक्का ला लैंदे यार,
2: गल तो सुन
0: जल्दी सुना
2: यार। ये दस दे अपने मुल्क च होर की घाटा ने?
0: घाटा बस जेड़े आउंदे ने उही सेल्फा मार के तुर जांदे ने, ताही हरेक साल पार्लीमेंट दी गरारी दे दंदे भुर जांदे ने। बाहरले मुल्कां दा करजाई है, क्लच प्लेट घसी पई है, डैन वो शाट है, इसे करके अपना मुल्क धक्का स्टार्ट है। तू भी नाल धक्का ला, जोर लगा के
1: हईशा,
0: मूड बना के
1: हईशा,
0: खिच जवाना
1: हईशा,
0: जोर लगा के
1: हईशा,
0: मूड बना के
1: हईशा। कॉमेडी आवर हरमन रेडियो।

0: हाँ भी की गल आ
1: आ जनाब कैबिन च मरीज बैठा
0: था इन दवाई देनी आ
1: ओ जनाब दवाई लेने आया अनपढ़ डॉक्टर तो दुखी होकर रिपोर्ट लिखा आया
0: गल एदा आई है के मेले च बहुत ज्यादा बिजी अज अही के रिपोर्ट नहीं लिखनी पर ओनू इनी गल कह दे रिपोर्ट अही लिखनी नहीं जे रिपोर्ट सुनानी चाहुंदा तो स्टेज ते आके गा के सुना सकदा
2: आए

0: Karman Radio, 24/7.
1: नच नच हाय टूट गए कंगरू, रुसिया यार मंदा नाही, हार शिंगार मैं कर कर थक गई, नजर करम दी करता नाही, शामा वेले आस दे पंछी, मुड़ मुड़ आए अपने करानू, चढ़ चढ़ कोठे तक तक राहा, थक गईया अखियां दिसता नाही, हाल फकीरा गिदरी लीड़ा, फट कंडियां नाल में सीड़ा।

0: Radio 24/7.
1: मैं जन्म दाती हाँ कविता दी, मैं कविता दे जन्म ते बहुत खुश हुई, पर आला दवाला चुप सी, क्योंकि इस चुप विच कोई दुख सी, पर मेरी चुप विच बहुत सुख सी। हुण जदों कविता ने बचपन च पैर धरिया, कविता दियां तोतलियां गल्लां, हसना चीकना रोना मुस्कुराउणा, पोला पोला तुरना खिड़ना ते खड़ना, ये मेरी आत्मा नूं अकै खुशी दा सरूर दिंदा। हुण मेरी कविता दियां सदरां जवान हो गईयां, ये सदरां हड़ दे पानी वांग बंदशां दे पड़ोले विच डक्कियां नहीं जांदियां। मेरी ये कविता भावां दे वेग विच वह के तर्क के सोहज भरपूर कई सवाल करती है। जेड़े बचपन दे हाणियां नाल लुकण मिचियां खेड़दी, हुण उहनां नाल मुस्करा के गल करन दी मनाही क्यों? ये मासूमियत भरिया सवाल पढ़ी लिखी जन्मदाती नूं लाजवाब कर दिंदा है। पर मैं दबाओ दी सुर नूं उच्ची करदिआं नैतिकता दी मोहर दा रट्टा लगाउंदी कविता नूं चुप करवा दिंदी हां। ना समझ कविता दियां भावनावां नूं मकैनकी सांचे विच बंद कर दिंदी हां। कविता आग्याकारी धी वांग चुप करके सिसकदी सिसकदी डायरी दा सहारा लैंदी है। हुण मेरी कविता लिखदी है एक कविता, मैं अपनी कविता नूं खोखले समाज दियां बेअर्थ बंदशां दे जाल तों मुक्त करांगी। सही जिंदगी दा हक दे के भैड़े समाज विच अणख नाल जीउण दे रस्ते विखावांगी। पर मैनूं पता है इत्थे मेरी कविता आदर्शवादी हो गई है। जदों मेरी कविता अपनी कविता दी जन्मदाती होवेगी तां ओ आप भी अपनी जन्मदाती वांग भैड़े समाज दे इतिहास दे पन्नियां तों सबक लैंदी सबर दा कुट भर के इन्हां पैड़ां ते ही चल।

दोस्तों, प्यार दा ना एमा, विश्वास दा ना एमा, एहसास दा ना एमा। मैं एक गल कहांगा, जिस इंसान ने कदे मां नू प्यार नहीं कीता, वो दुनिया विच कदे किसे नू प्यार नहीं कर सकता। सो आओ, भाई अमरजीत मां दे रुतबे नू किवें बयान करदा, आओ सुनदे हां।

0: सुनो ते सुनाओ अर्बन रेडियो।
1: हुन गुस्सा नहीं लगता किसी गल का, बस गल दिल ते लग जाती है। वार वार किसी नूं अपना चेता करवाना चंगी गल नहीं हुंदी। जे अहमियत होवेगी तां लोग खुद याद करनगे। खुशियां दी उम्मीद जे दूजियां तों रखोगे तां हमेशा धोखे ही खाओगे। दिल दा दर्द समझन वाला कोई कोई हुंदा, लोकी हस के कह जांदे ने चल कोई ना। जिन्नू कदे डर ही नहीं सी मैनू खो देन दा, उन्नू की अफसोस होना मेरे ना होन दा। जदो जिंदगी विच्चों कोई अपना चला जांदा है ना, ता इस तरह लगता है जिवें शब्दां विच्चों अर्थ निकल गए होण। अपनियां जड़ां इन्नियां डूंघियां करो कोई भी माड़ी संगत तुहानूं हिला ना सके। लोक जिंदगी विच आउंदे जांदे ने पर कुछ को हमेशा याद रहिंदे ने। चेहरे दीआं मुस्कानां नाल दिलां दे दर्द नहीं नापे जांदे। एक औरत विच असली सुंदरता उसदी रूह विच झलकदी है। जदों तुसी हार के उठते हो, टुट के दोबारा जुड़ते हो, तां उदों तुसी ज्यादा चमकते हो। मोहब्बत के खात्मे तो बाद प्यार फकीरी विच बदल जाता है। मेरे तो चंगियां तेरे शहर दियां राहां ने, जो नित चुमन तेरियां पैड़ां नूं। कदे याद ही नहीं रहिंदा कि उन्हूं याद नहीं करना, ते हमेशा भुल जाना के उन्हूं भुलना। भावें ही मोहब्बत का जिक्र करता होवे जमाना, पर प्यार की शुरुआत सदा मां तो ही हुंदी है। दुनिया तो ता कल्ले ही जाना पैंदा है, भावें अर्थी पिछे तुरता सारा चक है। सभे सदरां आसा रख कर देंदी, यह जो सिवें च बलदी अग है, यह जो सिवें च बलदी अग है।

0: हरमन रेडियो
1: 24 घंटे सत्ते दिन
2: हर सुख मिले रब्बा जग उत्ते मावां नूं तपण ना दई कदे ठंडियां ए छावां नूं हर सुख मिले रब्बा जग उत्ते मावां नूं तपण ना दई कदे ठंडियां ए छावां नूं काहदे ओह पुत ने नशे जिहड़े करदे तड़फाउंदे नित मां नूं नाले रहिंदे लड़दे कर कोई मेहरदाता जान सिद्धियां ए रावां नूं हर सुख मिले रब्बा जग उत्ते मावां नूं तपण ना दई कदे ठंडियां ए छावां नूं वलैत विच वसदा पुत कदों आऊगा सोचदी रहे आके कद गल नाल लाऊगा वलैत विच वसदा पुत कदों आऊगा सोचदी रहे आके कद गल नाल लाऊगा लाउंदी ऐ अंदाजे वेख बोलदियां कावां नूं हर सुख मिले रब्बा जग उत्ते मावां नूं तपण ना दई कदे ठंडियां इशावां नूं फते ने ता वेख्या मां विच रब है हुण तक मंगिया जो दित्ता मैनू सब है निर्माण भी करू पूरा मां तेरे आए चावां नूं हर सुख मिले रब्बा जग उत्ते मावां नूं तपण ना दई कदे ठंडियां ए छावां नूं हर सुख मिले रब्बा जग उत्ते मावां नूं तपण ना दई कदे ठंडियां।

0: अपनी बिजनेस की तरक्की ले तुसे भी हरमन रेडियो दियां सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपनी बिजनेस की एड देने लई जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करने लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन च विजिट करो।
1: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ
2: ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ
3: ਸੈਡ ਜਾਂ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ

0: रोटी हजम नहीं होंगी, वरतो गोल्डन ग्रेन फ्लोर मिल दा गरेवाल चक्की आटा, ताजा घट केमिकल दी वरतों वाली कणक जेड़ी के सीधी खेतां चो मिल च लई जांदी, आस्ट्रेलिया दा बनिया शुद्ध आटा, ताजा खाओ ते तंदुरुस्त रहो। आटे तो इलावा ताजा बेसन, लड्डुआं लई स्पेशल बेसन, मल्टी ग्रेन आटा, काबली छोले, मसरां दी दाल, चना दाल, सोयाबीन ते बादाम भी साडे अपने प्रोडक्ट हन। वधेरे जानकारी लई विजिट करो गरेवाल गोल्डन ग्रेन डॉट कॉम डॉट ए यू या फोन करो
1: 4285564। लो ताया आपा ले आउने इंडिया वाले गदे पंजाबी फर्नीचर तो। पंजाबी फर्नीचर? जी हाँ, पंजाबी फर्नीचर एथो मिलदा, सारा इंडियन फर्नीचर जो भी तुहानू चाहिदा सब एथो मिलू। मंजे, धार्मिक फोटवां, चादरां, साइकिल, चूल्हे, दातियां, रंबे, कई सब कुछ एथो मिलू। ताया जी लाया था तू मेरी टेंशन दूर करती, नाले तेरी ताई कहिंदी सी भी पता करी इंडियन बॉक्स बेड दा, ਉਹਨੂੰ ਵਾਲਾ ਫਿਕਰ ਲਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਲੀੜੇ ਲੱਤੇ ਸਾਹਮਣ ਦਾ। ਲਿਆ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲਿਖਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ, ਲਿਖੋ ਫਿਰ 2A130 ਕਿੰਗਸਟਨ ਰੋਡ ਅੰਡਰਵੁੱਡ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ। ਆ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਇਆ ਜੀ 0404000536 ਤੇ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜੀ punjabifurniture.com.au। ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਫਾਲੋ ਕਰੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ @ ਪੰਜਾਬੀ ਫਰਨੀਚਰ।
2: अपनी बिजनेस दी तरक्की लई तुसी भी हरमन रेडियो दीआं सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस दी ऐड देण लई जां किसे भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करन लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन विजिट करो।
3: हुण पेश है हरमन रेडियो दे न्यूज़ डेस्क तों इस घंटे दीआं खबरां दा बुलेटिन। वर्ल्ड न्यूज़ विच तुहाडा स्वागत, दुनिया भर दीआं खबरां दा बुलेटिन लैके हाजिर है हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया दी न्यूज़ टीम। पहलां चोणवीआं खबरां।
4: नेतन्याहू दा कहना है कि सुरक्षा मुखियां ने हमास दे 7 अक्टूबर दे हमले नूं अभ्यास समझण दी गलती कीती। रूस ने जापानी पत्रकार नूं जासूसी दे दोष हेठ गिरफ्तार कीता। AI दे गॉडफादर दा डेरियो अमोडेई दे AI विकास रोकण दे सद्दे दा विरोध। अमरीकी विदेश मंत्री रूबियो अगले हफ्ते भारत दा दौरा करनगे। तेल दियां कीमतां च वाधा हुती हमलियां ने चिंतावां वधाईयां। पाकिस्तान पंजाब च यात्री रेलगड्डी पटड़ी तों उतरी 5 मौतां, कई जख्मी। हुण खबरां विस्थार विच।
5: नेतन्याहू दा कहना है कि सुरक्षा मुखियां ने हमास दे 7 अक्टूबर दे हमले नूं अभ्यास समझण दी गलती कीती। नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा मुखियां बारे कहा कि ਉਹ ਹਮਾਸ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਿ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਮਾਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਜਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। नरेंद्र मोदी दे अनुसार अधिकारियां ने देखिया सी कि हमास दे अत्वादी अपने फोना विच इजरायली सिम कार्ड पा रहे सन अते हमास दे सीनियर कमांडर जमीनदोज हो रहे सन। प्रधानमंत्री ने हमले दे आले दुआले दियां असफलतावां लई वार वार इजरायल दे सुरक्षा प्रबंधन नूं दोषी ठहराया है, पर इस गल तों इनकार कीता है कि उसने गाजा तों इक वड्डे हमले दियां पेशगी चेतावनियां प्राप्त कीतियां अते उना नूं नजरअंदाज कीता। इस तो इलावा नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर दे हमले तो कुछ दिन पहला मिसर दे खुफिया मुखी अब्बास कमल दी गुप्त फेरी बारे रिपोर्टां दी पुष्टि कीती। नरेंद्र मोदी ने हालांकि इस गल तो इनकार कीता कि उसने कमल दौरान मीटिंग कीती जां गलबात कीती अते कहा कि उसनु नहीं पता कि मिसर दे खुफिया मुखी किसनु मिले सन। उसने सवाल कीता एक खुफिया मुखी एक राज दे मुखी नाल कदों मिलदा है अते अग्गे कहा मिसर दा खुफिया मुखी इत्थे सी।
4: गार्डियन दी खबर मुताबक रूस दी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ने दस्या कि जापान दे होकाइडो शिम्बून अखबार लई कम करन वाले पत्रकार नूं सतलिन खेतर विच हिरासत विच लिया गया सी। FSB ने दोष लगाया है कि पत्रकार ने रूस दियां रक्षा समर्थावां बारे जानकारी इकट्ठी कीती अते जापानी खुफिया एजेंसी नूं देण लई स्टोर कीती। सकलिन टापू जापान दे होकाइडो टापू दे उत्तर विच अते रूस दे काम चटका प्रायद्वीप वल वधण वाली कुरील टापूआं दी लड़ी दे पछम विच रूस दे दूर पूरब विच स्थित है। ज़खारोवा ने टोकियो दी आलोचना करदे होए कहा कि विदेशी पत्रकारां द्वारा अजिही जानकारी इकट्ठी करना जो रूसी सुरक्षा नूं कमजोर कर सकदी है बहुत अफसोसनाक है। टोकियो ने रूस विरुद्ध पछमी पाबंदियां विच शामिल होण मगरों मास्को ने जापान नूं एक गैर दोस्ताना देश ऐलान दिता। ए टापू ओखोत्सक सागर अते उत्तरी प्रशांत विचकार अपने स्थान कारण रणनीतिक महत्ता रखदे हन जिस नाल रूस नूं इस खेतर विच एक महत्वपूर्ण स्थिति मिलदी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा विवादित टापूआं विचों एक इटुर्प दा दौरा करन अते टोकियो वल्लों विरोध प्रदर्शन करन कारण अगस्त विच तनाव वध गया सी। AI दे गॉडफादर दा डेरियो अमोडेई दे AI विकास रोकण दे सद्दे दा विरोध। वड्डे भाषाई मॉडल जिन्हां नूं संखेप विच LLMs आख्या जांदा है नूं ठीक करना औखा है, इस करके कुछ हालतां विच ए इंसानां नूं नुकसान पहुंचा सकदे हन। यान लेकुन एंथ्रोपिक दे खिलाफ हन अते उन्हां दा कहना है कि ए ज्ञान विरोधी होण तों वखरा नहीं। लेकुन ने कहा कि बेसिक मॉडल वजन तक पहुंच नूं रोकना पुराने समय विच जानकारी नूं लोकां तक पहुंचण तों रोकण वर्गा है, जिवें 15वीं सदी विच ओटोमन साम्राज ने छपाई ते पाबंदी लाई सी। लेकुन अनुसार AI विकास नूं हौली करन दी दलील सिर्फ मार्केटिंग जां लॉबिंग दा एक रूप है अते एंथ्रोपिक सरकारां नूं डराउण लई AI नूं बहुत खतरनाक दिखा रही है। लेकुन ने ए भी कहा कि मनुखी सुपरवाइजर प्रयोगिक वातावरण नूं सही ढंग नाल डिजाइन करन विच असफल रहे जिस कारण AI एजेंट अपने राह तों भटक गए, पर क्योंकि ए एजेंट सुभाविक तौर ते बुरे नहीं सन इस लई कोई नुकसान नहीं होया। मीटिंग दौरान लेकुन ने दोहराया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नूं गवर्न करना मुख तौर ते एक तकनीकी चुनौती है ना कि कंट्रोल संकट। अमरीकी विदेश मंत्री रूबियो अगले हफ्ते भारत दा दौरा करनगे। अमरीका दे विदेश मंत्री मार्को रूबियो 17 तो 22 अक्टूबर तक भारत मुंबई अते जामनगर दा दौरा करनगे जिस दा मुख उद्देश दो पक्षी रणनीतिक संबंधां नूं मजबूत करना अते ऊर्जा सहयोग नूं वधाउणा होवेगा। ए दौरा उज़्बेकिस्तान दी यात्रा दा हिस्सा है जिस दौरान ओ समारकंद विखे C5+1 मंत्री मंडल दी मीटिंग विच शामिल होणगे अते उत्थे 5 मध एशियाई देशां जिन्हां विच उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान अते किरगिज़ गणराज शामिल हन, नाल वाशिंगटन दे रणनीतिक सहयोग नूं उजागर करनगे। भारत विच रूबियो सीनियर सरकारी अधिकारियां नाल मुलाकात करके अमरीका भारत रणनीतिक भाईवाली नूं होर मजबूत करन खेतरी अते ग्लोबल विकास ते विचार वटांदरा करन अते ऊर्जा सहयोग दे मौकियां ते चर्चा करनगे। इस तों इलावा ओ वपारक भाईवाली अते आर्थिक सहयोग लई मौके लभण खातर वपारक आगुआं नाल भी मुलाकात करनगे। इस साल ए मार्को रूबियो दा भारत दा दूजा अधिकारत दौरा होवेगा।
5: बुधवार नूं कच्चे तेल दीआं कीमतां विच वाधा होया क्योंकि वपारी यमन दे ईरान समर्थित हूती बागियां वल्लों साउदी अरब उत्ते कीते जा रहे हमलियां दे वधदे खतरे अते रूस वल्लों डीजल दीआं वधदीआं बरामदां नाल बाजार विच आउण वाली राहत दीआं उम्मीदां दरमियान स्थिति दा जायजा लै रहे सन। निसान सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट दे मुख रणनीतिकार हिरोयुकी किकुकावा ने राइटर्स नूं दस्या हुतियां अते साउदी अरब विचाले चल रहे संघर्ष कारण सप्लाई संबंधी चिंतावां कीमतां नूं वधा रहियां हन अते नाल ही उन्हां ने उम्मीद जताई कि रूसी डीजल बरामदां विच वाधा जिहड़ा कीमतां विच वड्डे उतरा चढ़ा नूं सीमित कर सकता है स्थिति नूं संतुलित रखेगा। साउदी अरब दे ऊर्जा मंत्रालय ने दस्या कि हुतियां ने तारान विच स्थित सरकारी तेल कंपनी साउदी अरामको दी एक प्रबंधकी इमारत उत्ते हमला कीता जिस कारण एक मामूली अग लग गई। इस दौरान ਰਾਇਟਰਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਓਪੈਕ ਦੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।
4: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਚ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰੀ, 5 ਮੌਤਾਂ, ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ। ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਪੈਸੰਜਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 5:15 ਵਜੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਰੇਲ ਗੱਡੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿਮਾਨ ਬਾਬਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸੀ, ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਤਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਆਮ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 30 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
3: ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਪੱਖ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਬਾਕ ਚਰਚਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਵਿਊਜ਼।
5: ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿਚ 6 ਵਾਰ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਅਤੇ 2 ਵਾਰ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿਚ ਖਬਰਸਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
6: ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ।

0: चल चलिए एक दुनिया बनाइए विच होण खुशियां दे रंग, गल्लां करिए दिल वालियां, भाईचारे दे संग। सोच परवाज नवा आगाज ते दिल मिलियां दे साज, सुनिए सुनाइए सांझी एक आवाज। ऑस्ट्रेलिया दा 24 घंटे सत्तो दिन चलन वाला पहला पंजाबी रेडियो ट्रूली यू आर।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी।

Bobby. तभी चलो काम ते सुनी जाओ हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया।

0: के दोप में हसो।
1: जट्टा के मुंडे साढ़े नाल है के चंडा गाड़ के बदमाशी करना है।
0: थोड़ा थोड़ा हंसना जरूर चाहिए।
2: भाई चाचा जी वाह, गीत कहदा सी निरी कोके नाल जड़ी डांगी सी।
3: ओए पतीज, तेनु ए जड़ी डांग दींदी कोके नाल जड़ी आ, असल च कोके नी, ए ता तेरे मेरे वर्गे आम बंदिया नाल कीते धोखिया नाल मड़ी आ।
4: चाचा जी गोल मोले गल्लां करके जनता नू ना उलझाओ, ए डांग कोकियां वाली बारे जरा विस्तार नाल समझाओ।
3: ला सुन बीबा, फिर ए सौड़ी सियासत दा पहला कोका मैं जमा शिखर ते जड़िया, जिदे करके मुल्क है साडा गुरबत दे विच वड़िया। दूजे नंबर ते लग्या कोका सोने अंगू चमके, हुण ना किसे नू मिले नौकरी सिफारशी बह गए जमके। जात पात ते धर्म मजहब दा, जात पात ते धर्म मजहब दा ए बड़ा है तकड़ा कोका, सब तो वड्डा मंत्रियां नू ए दंदा है मौका। वोटां वेले हरक ने हुंदा एही मुद्दा फड़िया, ताइयों ता बीबा ए कोका मैं तीजे नंबर ते चढ़िया।
4: चाचा जी वोटर ने हुन होए सियाने, सब समझ दे कारे, मीडिया ने सब नंगे करते पर्दे लाते सारे।
3: बड़े चिरा तो बहुत सह लिया तक्का हुंदा लोका ने, सोने दी साडी चिड़ी चूंड ली चिंबड़ियां हे जोका ने। मौका देना एक अखीरी, छड़ दो पुठे कारे, नहीं डांग कोकियां वाली कहंदी दने दिखा दूं तारे। पतीज बकरे दी मां कतक कतक कतक खैर मनाऊगी, जे ए सुधर गए ता ठीक आ, नहीं फिर डांग दी वारी आऊगी,
0: डांग दी वारी आऊगी, डांग दी वारी आऊगी।

0: What's happening in music, culture, community events?
1: Harman Radio
0: brings you the best from UK, Canada, USA, and India.
2: This is a special, something completely different.
0: What's happening in music?
3: Smashing comedy.
4: Hey, Candy.
5: कौन है भाई सवेरे सवेरे
6: साले असी भी कोई कच्चियां गोलियां नहीं खेडियां
7: जिला वो कंजर बाहरों आया ओदी संग कर लो
8: Can I go now?
9: हरमन रेडियो
10: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी।

0: हर प्रोग्राम दी जानकारी, रेडियो दी हर गतिविधि ते नजर। ज्वाइन करो साडा फेसबुक पेज facebook.com/harmanradio australia जां जुड़ो टेलीग्राम ते telegram.me/harmaninfo। वधेरे जानकारी लई विजिट करो साडी वेबसाइट harmanradio.com।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी

निसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं, निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

0: अपनी बिजनेस दी तरक्की ले तुसी भी हरमन रेडियो दियां सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस दी एड देने लई जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करन लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन विजिट करो।
1: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन ऑस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो हरमन रेडियो 24 घंटे।

भगत परमात्मा दे प्यार दे विच सब कुछ राज ते मुक्ति भी कुरबान कर दिंदा है। जिवें कि भाई तिलकू ने गढ़शंकर दे विच उस नाथ नूं कहा सी जो कह रहा सी कि मेरे दर्शन करन वाला एक साल लई बैकुंठ जावेगा। भाई तिलकू ने कहा सी कि नाथ जी तुसी बंदियां दी गल करदे हो, मेरा सतगुरु जिस अमृतसर दे विच रहिंदा है उत्थों उड के लंघन वाले पंछी भी मुक्त हो जाणगे। विचार ज्ञानी जसवंत सिंह परवाना, सोहणे विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो नाल।

विचार नाम दी, विचार शब्द दी, विचार अखुट खजाने दी, विचार महान उपदेशां दी, विचार दृढ़ता दी, विचार आत्मक अडोलता दी। प्रोग्राम गुरबाणी विचार विच रोजाना तुहाडे अपने रेडियो हरमन रेडियो ते वधेरे जानकारी लई लॉग इन करो harmanradio.com ते।

0: गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो पलके उठ हर नाम ते आवे उदम करे पलके परबाती इशनान करे अमृत सरनावे। धन गुरु रामदास महाराज जी दे गौड़ी की वार विचों बख्शिश इन्हां पवित्र बोलां दे नाल आप सब गर्मक रूहां दा हरमन रेडियो दे वेड़े विच स्वागत है। सिडनी आस्ट्रेलिया अनुसार अमृत वेले दे पांच वज चुके ने ते मैं दलजीत सिंह मेहता चौक हाजर हां। अमृत वेले दा अमृतमई प्रोग्राम गावो सच्ची बाणी लेके मेरे वल्लों आप सब नू जी आया स्वागतम। आओ गुरफते दी सांझ करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्रोग्राम गावो सच्ची बाणी दी शुरुआत अमृत वेले दे नितनेम दी बाणी जपजी साहब दे पाठ दे नाल ते इस तो उपरंत आप जी करीब ढाई घंटे तक सरवण करोगे शब्द कीर्तन ते गुरमत विचारां। हुण इस प्रोग्राम विच आम शब्द कीर्तन दे नाल नाल आप जी सरवण करिया करोगे तंती साजां पक्के रागां विच शब्द कीर्तन। ता आओ सब तो पहला शामिल हुंदे आ नितनेम दे प्रवाह जपजी साहिब दी बाणी दे नाल।
1: एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सोचै सोच न होवी जे सोची लहवार चुपै चुप न होवी जे लाय रहां लिवतार। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार। सह सियान पाला खोए ता एक न चले नाल। किव सच्यारा होई है किव कूड़े तुटे पाल। हुकुम रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहा जाई। हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वड्याई। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है। एक न हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पुआई है।

तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत जे को बुझै होवै सचियार तौलै उपर केता पार धरती होर परै होर तिस्ते पार तलै कवन जोर जी

एक बार जो तुद पावे साई पलिका तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मो

ताला पाताल लख आकाशा आकाश ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन एक वात सैंस अठारह कहन कते बा असलू एक

मूर्ख खाई खाए केतिया दुख पुख सदमार ए बेदात तेरी दातार बंद खलासी पाने होए और आख न सके कोए जे को खाएक आखन पाए ओ जाने।

की धर्मत नास सगल मनोरथ पावे नानक पूर्ण होवे आस। राग कानड़ा विच पंचम पातशाह दा ए उपदेश जो रब्बी कीर्त विच जुड़दा है, रब्बी नाम दी विचार करदा है। कीर्तन दा भाव भी रब्बी विचार विच जुड़ना हुंदा है। कहिंदे सतगुरु की ओदी भैड़ी मत नालो नाल दूर हुंदी जांदी है। सज्जन ठग उसने कदी चेता भी नहीं किया होएगा कि मेरे जिहड़े गुनाह ने ओ बख्शे जाणगे, मैं एक चंगे मार्ग ते चल सकांगा। पर सतगुरु दे एक शब्द ने उसका जीवन बदल दिता। उज्जल कहा चिलकना घोट मकालड़ी मस। ता इवें साडी दुरमत जिहड़ी है भैड़ी मत दूर हो सकती है। सतगुरु कहिंदे सगल मनोरथ पावे नानक। जिंदगी दे जो मनोरथ ने, जो शुभ मनोभावना ने, वो पूरियां हुंदियां ने। पूर्ण होवे आस, आसा पूरियां हुंदियां ने। ते जीवन दी आस तां इहो ही है कि असीं उस मालिक नूं मिल सकीए। तां आओ उस मालिक नूं मिलन दा उपराला करिए। आओ शब्द सरवण करिए।

नित प्रभ को पाई। सो मूरत भला संजोग है जित मिले गुसाई। जैसी दीवार पंचम पातशाह जी की पवित्र रचना ते पंद्रवी पौड़ी की ए पंक्ति। ओ केड़ा वेला है, केड़ा संजोग है जदों मैं अकाल पुरख नूं पा लवांगी। ए जीव आत्मा कह रही है। ओ केड़ा वेला है, तन सवेला जित दर्शन करना। सो मूरत भला संजोग जित मिले गसाई। ओ कदों मुहूर्त खुलेगा मेरे, ओ कदों संजोग बनोगे जो मैं गुसाई अकाल पुरख नूं पा लवां। ता सच्चे मालक नूं पाउण लई सतगुरां दे पवित्र शब्द ही साडा सहारा ने, शब्द ही संजोग मिलदे ने, शब्द ही ओ समां लियांदे ने। ता आओ गुरबाणी दे इस अथाह प्रवाह विचों शब्द कीर्तन दे नाल जुड़ना करदे हां।

डाल पर ठांडो खाए खाए मुस्कारे गिरो जाए रसातल परियो शिटी शिटी सिर पारे। राग सारंग दी बाणी विच्चों गुरु नानक पातशाह दी पंचम जोत धन गुरु अर्जन देव महाराज जी फरमान करदे ने कि मनुख तू जिस रुख दी टहणी ते बैठा है आ मनुखा जन्म एक रुख है और असी इस नूं इस उपर बैठे हां ये साडा थाओ है सानू ए धर्म दा कारज करन लई एक थाओ मिली है पर असी इसे पेड़ नूं इसे रुख नूं कटी जा रहे दियां जड़ां वड्डी जा रहे हां मनुखा जन्म अजाई गवाई जा रहे हां ते जदों ए रुख डिग पिया ना ते नाल ही तू भी डिग पएगा मनुखा जन्म दे नाल ए मन ए शरीर ए काया सब कुछ नाल ही डिग पैना है ए जीवन खत्म हो जाना है। गिरो जाए रसातल रसातल भाव डूंगे बड़ा डूंगा डिगेगा 84 लाख दा गेड़ फेर पएगा चिटी सिटी सिर भारे सब कुछ तेरे उत्ते आन भारी होएगा। आओ इस मनुखा जन्म दा लाहा खटिए ते गुरबाणी दी इस अथा समुंदर विच डुब्बी लगाउंदे होए गुरबाणी दे इस पवित्र शब्द नाल जुड़ना करिए।

हुई स्वेदी ताजगी संग ताजा खबर महत्वपूर्ण जानकारियां मनमोहक संगीत सेहत संबंधी सिलसिले मुलाकातों का दौर अति सरगोशियां मालबंतो माणो मेरे नाल यानी अमरदीप कौर नाल हरमन रेडियो दे प्रोग्राम लहरां दे विच सवेरे 8 बजे तो 10 बजे तक।

0: हरमन रेडियो
1: 24 घंटे 7 दिन।
2: युद्ध बारे रोमन दी कहावत है कि युद्ध अंदर हारन वाला तबाह हो जांदा है अते जीतन वाला रोंदा है। सोने विचारां दे अंग

0: दोस्तों मैं दीप जगदीप ते तुसी सुन रहे हो हरमन रेडियो हरमन रेडियो हुण मैं हरमन रेडियो ते अपनी आवाज विच पंजाबी साहित विचों प्रसिद्ध कहानियां कवितावां अते अणमुल्ले विचार लेके हाजिर हुंदा हां मेरियां होर भी रचनावां सुनन लई अते अपने कीमती सुझाव देण लई यूट्यूब उपर मेरा चैनल पंजाबी साहित्यक मंच देख सकते हो।
1: मैं क्या कट दू चढ़ तेरा लखनऊ वाला गिल।

0: Harman Radio
1: 24/7.
2: कुछ करने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों लिए इस दुनिया च कुछ भी असंभव नहीं है। विचार इब्राहिम लिंकन। अजे ही होर खूबसूरत विचारां दे लिए बने रहो हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया दे नाल। दिल पंजाबी, जज्बा पंजाबी।

0: अर्मन रेडियो 24 घंटे सत्ते दिन।
1: अग जाने लोहार जाने फूकन वाले दी जाने बला।
2: इस अखाण दा भाव है कि जदों दो धिरां आपस विच झगड़ रहियां होण तां तीजी थिर उनां विच अजाई दखल ना देवे। झगड़न वाले आपे ही निबेड़ा कर लेणगे।

0: हरमन रेडियो रेडियो कमाल बा कमाल।
1: उस आदमी नू अकाऊ आदमी कहा जाता है जेड़ा हाल पुछन ते सच्ची मुची अपना हाल बयान कर लग जाए। विचार जॉन मॉरिटियर। चंगे विचारों ले जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

0: आवाज दी खूबसूरत प्रवास हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया ते आप सब दा स्वागत है। रेडियो ते अपने गीतां दी फरमाइश ले तुसी साडे नाल ईमेल अते टेलीग्राम राही जुड़ सकदे हो। टेलीग्राम मैसेज करो इस नंबर ते 9197080149। तुसी सानू ईमेल भी कर सकते हो request@harmanradio.com।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी आहा।

0: के धूप में हसो।
1: जट्टा के मुंडे साढ़े नाल है, चन्ना गाड़ के बदमाशी करना है।
0: थोड़ा थोड़ा हंसना जरूर चाहिए।
2: पंजाबी फिल्मां वालियां ने होर सब कुछ छड़ता। जट सूरमे मौला जट पुत जटां दे जट बैरी जोर जट दा जारी जट दी अणख जटां दी बदला जट्टी दा ललकारा जट्टी दा जट दा गनासा दे जट ते जमीन जट दा नाम फिल्मां च पा के जट दा कचूंबर कढ़ता। मेरी नवी फिल्म वास्ते जट दा कुछ भी नहीं रह गया, इस करके मैनूं अपनी नवी फिल्म दा नाम कट्टा जट दा धरना पै गया। जट ते जट्टी दा नाम फिल्मां दे विच बिल्कुल घस गया। मेरा एक दोस्त पंजाबी फिल्म बना के नां धरन वेले कहिंदा रुपया 14 लाख लग्गिया, हुण दस मैं की करां, नवी बनाई फिल्म दा टाइटल दस मैं की तरां। मैं इन्हू समझाया भी अपने पंजाबी फिल्मां च जट चलदा, पर बाकी फिल्मां आले ने अपने वास्ते जट दा कोई छड्डिया नहीं, पर आपां नूं धरना जट ते जट्टी चुप हो। एवें लोकां दे पिछे लग के घर नहीं पट्टी दा, चुप करके नवी फिल्म दा नां धर दे वेल ना जट्टी दा। कहिंदा यार ऊट पटांग जे टाइटल दस के क्यों पोचना मेरी फट्टी हुए, मेरी फिल्म च कोई जट नहीं हैगा, ना बनी कोई जट्टी। मैं इन्हू समझाया ओए बुद्धूआ बाकी फिल्मां च कहड़ा जट हुंदे ने। अजकल प्रोड्यूसर पता की सोचते ने, फिल्म उन्ना चिर सफल ना हुंदी जिन्ना चिर जट दा मान नहीं हुंदा। जट दा नां देख के जट फिल्म नूं देख लैंदे, विच जट दा नामो निशान नहीं हुंदा। गल मेरी जद अकल च पई, कहिंदा तैं मेरे ते बहुत आसान कीता, पहला तां वेलना जट्टी दा फिल्म बनाई, फिर कुर्ता जट दा मुड़का जट दा पजामा ते जट दा मामा, चार नवीआं फिल्मां बनाउण दा झट ऐलान कीता। ए पंजाबी फिल्मां वालिओ एवें ना फोके बहम करो, जट दा नां तुसीं बड़ा घसाया, हुण जट दे नां ते रहम करो, हुण जट दे नां ते रहम करो, हुण जट दे नां ते रहम।
3: हरमन रेडियो
4: 24 घंटे 7 दिन एक तो बाद दूजा बैक टू बैक।

0: एक मोड़ पे बैठा हूँ, एक मोड़ पे बैठा हूँ जिस मोड़ से जाती है हर एक तरफ राहें। एक रोज तो यूं होगा, इस मोड़ पे आकर तुम रुक जाओगी, कह दोगी वह कौन सा रास्ता है जिस राह पे जाना है, वह कौन सा रास्ता है जिस राह पे जाना है।
1: तोहाडे मन दी रीझ पुगावांगे, मन चाहे असी गीत सुनावांगे, हर मन रेडियो ते।

कोई मक्खी किसी शाही घोड़े नूं डंग मार सकती है अते उस नूं कंबनी भी छेड़ सकती है, पर फिर भी ओ कीड मकौड़ा ही हुंदी है अते कोड़ा कोड़ा ही हुंदा है। विचार सैमुअल जॉनसन। चंगे विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

0: अपनी बिजनेस की तरक्की ले तुसी भी हरमन रेडियो दी सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपनी बिजनेस की एड देने लई जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करने लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन च विजिट करो।
1: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ।